0: ये सभी व्यक्ति सोनी पुंग बलाव
1: ये मरिया व्यक्ति आजेव पुंग पस बलाव
2: ये नरहर व्यक्ति जबरी जबरी
0: सिंग मोंगला एंड अक्षिक
3: मौई दरिंगा
0: मौई नंग मौई